सब समान मोली धरती मोरे आकाश मोली धरती मोरे आकाश मोली धरती मोरे आकाश मोली धरती

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले पास्यों शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नू डराने दी की लोड़ है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित

0: संत नपावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पार वारिया
1: अंत न पावत देव सबे
0: अंत न पावत देव सबे।

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों ये भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग

0: DM Music पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई।
1: गुरु रामदास राखो सरनाई।
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रस भिन्नी आवाज विच
1: राखो सरनाई।
0: ए पेशकश

करती है। ऐ मनुख तू चेते कर, माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये, एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर, शेर तले पांव ऊपरे, वसंतो कोथड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये, उदरे जिसके दाएं। ओ समा चेते कर, जदों तू पुठा लटकिया होया सी, ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं, जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी, उस वेले तू अरदास करदा सैं, हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़, मैं तेरा सिमरन करांगा, तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला, तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा, सत संगत बह के हर नाम दिया सा, तू भुल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफुल, पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई थर लै अपने मन विच इस नूं थर लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माणे मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नूं जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नक तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान पर एक दिन मंजे ते पै जे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में ए राग सिंधी।

के जावा सावन वन हरियावले सुके जावा सबको सरसा वर्ष दे जूरे जोला सब नारा तुम लावना सबना रात मिलावड़ा चकवी दो रहा संख समुन्द्र।

खाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्ने छिलछू है न कोई रंग मजिठों निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या टिसको न सथोई बेमुख सुके रुख ज्यों

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पै गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

सिर छार उड़ावे। तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे। निंदक नाम भी होने सत्संग ना पाए, मूर्ख सच न जाननी।

अखंड कमत्ता दरसे वै मिर्गावले होए बै अवत्ता करे हकूमत अग्नि कूड़े मदमत्ता बोलन पाज उघाड़िया ज्यों मूली पत्ता त्यों दर गए मीणा मारिए

की बरसन लक्ष्मी। बाबे दा होना सुन के सारे लोग उधर नु आ गए जिधर गरीब नु आज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिदे विच लोक माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पौनी भुल गई ना उताल रहा ना उराग रहा।

खादी कुणस जुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात सुनना, जरा प्यार नाल सुनना। कहंदे ने खादी खुण

हे नानक जी ये गल दसो, एक पासे ते तुसी उदासी पेख तारिया पे, एक पासे तोड़े बाल बच्चे तोड़ा परिवार तुसी गृहस्थी हो।

0: ए सुन बचन जुगी सरा।
1: भाई साहब कहते हूं झगड़ा कर लगे ने, गुरु नानक नु डराउन लगे ने, अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाता।

करके उड़न पंखी। भाई साहब कहंदे ने कोई उड़न वाला पंछी बन रहा, कोई बघियाल बन रहा है, कोई चीता बन रहा है, कोई शेर बन रहा है। एक पर कर करके

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरा नू पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नू अपने चेले नू एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी की लोड़।